साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीत, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे कट्ठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना ता मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी एना लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहन तो भाव सतगुरु ने केवल ए बचन आख्या नहीं, पहले बचन नू कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नू वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहन वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पेन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखी।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे? कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक हौमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वो दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ, जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान ता हो सकती है, आपा पहले जात भुल जाइए, आपा जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबा ने बानी

यीशु ये बचन धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। हुण तुसी ए देखो गुरु साहिबान ने कहा नहीं बल्कि इसनु कर दिखाया है, हुण करके भी ऐसा दिखाया है कि मेरी निगाह अंदर केवल जोत नु थां है, जात नु बिल्कुल नहीं। मैं जात नु मनदा ही नहीं, केवल जोत, क्योंकि मनुख दे अंदर जोत है ते मैं केवल जोत दी पहचान दसी है। हे गुरसिख, तू जिदे अंदर वेखे जोत वेख, क्योंकि जे परमात्मा ने तेनू संसार विच भेजे है ते अपनी जोत टका के, जे तेनू अखां दित्तियां ने ते केवल इसे लई कि तू परमात्मा दी जोत ही वेखे। मैं नहीं चाहना तू होर कुछ वेखे, केवल परमात्मा दी जोत ही वेखे। अज साडे अंदर फर्क क्यों पिया, असी जात वेखने आ, परमात्मा कहिंदा जोत वेखो। जात तकने आ जोत नजर नहीं आउंदी, जोत छिप जांदी है। इसलिए आपां हुण जोत दी पहचान किवें करनी है, गुरु नानक पातशाह अगे बेनती करिए, पातशाह तुसां ने जोत वेखी है, तिस भी तुहाडे सिखां साडे ते भी करो कृपा, असी जोत वेख सकी। साध संगत, इको नगर दे रहण वाले धन गुरु नानक पातशाह, इत्थे ही रहने वाला ऐसा एक मनुख, एक व्यक्ति जिन्हों गुरु नानक पातशाह जद मिलदे कहिंदे पुरखा सुना की हाल है, किधर चले हैं, की काम करना है। कहन लगा महाराज काम की करना है, मैं लोकां दी उस्तत करना। ना की है तेरा, कहन लगा जी दाना। साहब कहन लगे तेनू पता है दाना किनू कहिंदे ने, कहिंदे नहीं महाराज, कहिंदे ने दाना कहिंदे नू सियाणे नू बुद्धिमान नू, कि तू सियाणा हो के उस्त लोकां दी करना है, आ मैं तेनू सच्चे मालिक दी उस्तत करनी दसा। कहन लगी पातशाह तुहाडा मेरा मेल नहीं हो सकना, तुसी बेदी कुलभूषण बेदी अंश विचों ते मैं एक छोटी जी जात विचों, तुहाडा मेरा संग किवें हो सकता है। साहब कह लेंगे क्यों नहीं हो सकता, मैं तेरी जात ते नहीं पुछी, ना तेरी जात वेखी है, मैं ते तेरे अंदर जोत वेख के आवाज दिती है। जेड़ी तेरे अंदर जोत है ना, बड़ी निर्मल है, तेरे मेरे विच अंतर की है, आ दानिया मैं तेनू दाने तो मर्दाना बनावा। सोई मर्द मर्द मर्दाना, दाने तो मर्दाना बना दिता। कहन लगी पातशाह साडे विच दूरी उतनी ही है, ओदे विच फर्क नहीं पिया, दाने तो केवल मर्दाना बनाया, गल नहीं बनी, जात दी दीवार उत्थे ही खड़ी है। साहब कहन लगे भोलिया मैं भी गरा देना, दाने तो मर्दाना ते मर्दाने तो भाई मर्दाना, अज तो तू मेरा भाई होया, लै हुण तेरे ते मेरे विच अंतर काई ना है, तू मेरा भरा बन गए है, तू ते मैं एक हो गए हां, मैं जात दी दीवार भी गिरा दित्ती है, अज मैं तेनू अपना भरा बना लिया। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं बल्कि ऐसा कर दिखाया, सतगुरु दी बाणी है।

हे परमात्मा, मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहिदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करना आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने अकाल पुरख कोलों बर्दाश्त

सो गुरु ने जोत दी पहचान कराई है। भाई जोत वेखो जात ना पुछ। ते साध संगत ए जो इस वेले प्रतख जोत एक मरतबा शीश नौती आखो तन गुरु ग्रंथ साहिब साडे सनमुख जग मगा रही है। हुण मैं इहदा वचन तुहाडे समक्ष रखा क्योंकि मैं एक कीर्तन विच जिक्र कीता सी, मैं ए वचन तुहानू जरूर सुनावांगा। कहिंदे ने तन गुरु अर्जन साहिब दे मन अंदर एक ख्याल किवें उत्पन्न होया। एक दिवस

सोरठ महला पंजवां प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख विन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख विन से सुख पाया।

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन प्रतिमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री

बादशाह जी ने कैसा राज गुर सिखा नु बख्शिया, शब्द दा सच दा राज, गुरमुख सच्चा पंथ है,

अकी चढ़ाओ चरंदा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण

भगत सैन जी दे घर हो रहा है। भी कौन कर रहा है? महापुरुष प्रौणे आए। संत जन प्रौणे आए ने।

भगत सैन जी दे घर आई। सोभा सुनी है ना, सिमरन वाला है। भगत सैन जी ने भोजन पानी छकाया, सेवा कीती। रात्रि शुरू हुई, महापुरुषां ने कीर्तन भी आरंभ कर दिया। ते भगत सैन जी अखां मूंद के बैठ गए।

उस प्रभु परमात्मा ने देखिया भी मेरा भगत कीर्तन विच बैठा है, शुद्ध बुद्ध नहीं किसे प्यार विच। जे ए ना गया ते इनू राजा गुस्से हो गए। जे राजे ने कोई बोल कबोल बोल दिते ते मैं किमें सारा। कोई रब दे भगतां नू सिमरन करन वालेयां नू माड़ा शब्द बोल देवे ना ते रब दा दिल दुख जांदा है। नहीं बई, किते कोई राजा बोल कबोल ना बोल दे, इनू ड्यूटी तो कम तो हटा ही ना दे। सैन जी कीर्तन विच बैठे ते इधरों समा हो गया है इस देर।

अज तो मैं तेरे चरण पुटिया करा तू नहीं मेरे बराबर राजगद्दी ते बैठा कर हुण दरबार लगता है ना ते राजा सैन जी नूं

बाबा बुढ़ा जी वापस आए। जो पाईसा पाई गुरुदास जी जवाब लेके आए सन, ओहो ही जवाब बाबा बुढ़ा जी गुरु अर्जन देव जी नू देन लगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि स्थित हो गए। अंदर गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे चरना कमला विच अरजोई करन लग पए। अंदरों जवाब आया कि ओ बाणी जो वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोए। ए गुरु अर्जन, ओ बाणी लैन जाना तेनु आप पवेगा। अंदरों जो आवाज आई ते गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्काल हुक्म मंदे हुए तैयार हो गए। संगतां नू कहन लगे कि बाबा मोहन जी पास बाणी लैन मनु जाना पवेगा। संगतां तैयार हो गई, महाराज असी भी आप दे नाल चलदे हां। गुरु अर्जन देव जी कहन लगे, नहीं बई, गुरु नानक दा हुक्म केवल मैनू ही होया है, मैनू ही जाना पवेगा। जा तैयार होए ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सरंदा चुकिया ते चल पे बाहर। नंगी पैरी चलन लगे, संगता ने लिया के जोड़े अगे रखे। जदों गुरु अर्जन देव जी ने देखिया संगता दा प्यार, संगता नू आशीर्वाद दित्ती ते नाल बचन कीता, बई मैं किसे दे घर नहीं जा रहा, मैं ते अपने महापुरुखां दी बाणी नू लैण वास्ते जा रहा हां। ते बाणी नू लैण जाना होवे ते फिर गुमान किस चीज दा, अहंकार किस चीज दा, उत्थे ते नंगी पैरी ही जाना पवेगा। गुरु अर्जन देव जी दा प्यार देख के संगतां दियां अखां विच आंसू आ गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज चल पए ते चलदे चलदे नंगे पैरी जा पहुंचे बाबा मोहन जी दे द्वार ते। मगर जिस तरह पाई साहब पाई गुरुदास जी ने, बाबा बुढ़ा जी ने दरवाजा खटखटाया सी, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरवाजा नहीं खटखटाया। बैठ गए दरवाजे ते, दरवाजे ते बैठ के लिया सरंदा, सरंदा छेड़िया ते संगीत दी तुंदे

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, जो तुमरे दुख तत्काल

कहे मन लाजुम रसा, अवरा पे कहे मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा, मन लोकां पास फरोलदा। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनों भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत खडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां की पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र की पूजा उचारदे ने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगवती बढ़ली सरोही ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र की पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पत्रिका झलहे तहंती, नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बान गंगा तरंगी, तेरे साम है मोक्ष दाती अपंगी, फिरे शाम है मोख दा

खंडो खड़ग अस्त्रपान खंडो खड़ग तुप तवर आते अस्त्रपान खंडो खड़ग तुमक तवर आते सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर सैफ सरोही सैफी यही हमारे तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार नाम तुम्हारो जो

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आ गर्दन तीरम।

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त,
0: ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर धैया, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इसनु ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण किया हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार पुलाव पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ये जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसा की फतेह। चार फूट के अंदर
1: रूम ना पत बजाओ शाम मोहरा चलाओ। सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज।
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब।
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज।
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं। चार वर्ण एक वर्ण कराओ वाहिगुरु सिंह को नाम जपाओ।
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को तुर्क।

0: देश खालसे को पुर्त जाएंगे भाव, देश खालसे को पुर्त जाएंगे
1: भाव। एक चले सिंह
0: झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौ बजे सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदय।

लक्ष्मी पैसिया नू के माया नू हुण जिहड़ा मत्था टेकदा है वो पैसे भी रखदा है ते लक्ष्मी इस तरह वरसन लग पई जिस तरह मीह पैंदा है भाव गुरु साहिबां दे चरणां दे अगे माया दा ढेर लग गया।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, तो सारे पांड सिद्धा को गए, साडा लोटा लभ दियो किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धा नहीं सी, लभ के किवें देंदे। सिद्धा ने लुको ए लोटा, सिद्धा ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे, पांड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धा ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ उहदे कोल, उस नूं आखो जे उहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ये सारे पांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती कीती, महाराज साडा माया वाला लोटा लभ दिओ, किसे ने चुक लिया। तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक उते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धां दा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धां नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

बैठे लोग डरन लग पे। इस सिद्ध बड़े शक्ति वाले ने पता नहीं हुण की होवेगा, गुरु नानक दे नाल एक ही सलूक करनगे। भाई गुरुदास जी बयान कर दे, खादी खुणस युग हिसरा। खुणस कहंदे ने ईरखा गुस्सा। इन्हां जोगियां ने मन विच बड़ी ईरखा और खुणस खादी

तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं। तो जिहड़ा ग्रिस्ती है तियां पुत्रां वाला है, वह रब का भगत नहीं हो सकता, वह जोगी नहीं हो सकता, वह संत नहीं हो सकता। यह गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगरनाथ का यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब का भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। ग्रिस्ती माड़ा है। यह पंगरनाथ का विचार है, जोगियां का विचार है, तो गुरु नानक का की विचार है, वह भी सरवण करो।

ये घर वाली मां हो गई, ये तो रिश्ते ही सारे बदल गए। मां मां है, पत्नी पत्नी है। सतगुरु कहन लगे, पंगरनाथ तेरी मां कुछ अजी सी, क्योंकि बच्चे का पहला गुरु ओदी मां हुंदी है। तेरी मां ने तेनू चंगी तरह सिख्या नहीं दिती। केड़ी सिख्या?

होए अतीत। अतीत कहंदे ने जिहड़ा घर बार छड दे दे। साहब जी कहन लगे कमाल है, एक पासे कहंदे ओ संसार माड़ा है, एक पासे कहंदे ओ संसार रब दी खेड है। आखो सतनाम श्री वाहे। एक पासे कहंदे ओ संसार माड़ा है, गृहस्थी माड़ा है, गृहस्थ माड़ा है। छड़दा ते बंदा उसे चीज नूं है ना जिहड़ी चीज माड़ी होवे। होए अतीत गृहस्थ तज, तज कहंदे ने छड़ना, अतीत बन गए हो, घर बार छड़ दिता, तिया पुत्र छड़ दिते, घर वालियां नूं मां कह के जंगलां विच जाके बह गए। पर एक एहो जिहा तुहाडा जोग है, एक एहो जिहा तुहाडा धर्म है। एक पासे गृहस्थियां नूं माड़ा कहंदे, ते जद भुख लगती है फिर ठूठे फड़ के इन्हां दे घर मंगण क्यों जांदे हो। आखो सतनाम श्री वाहे। गृहस्थियां दीआं पक्कीआं खांदे हो ते गृहस्थियां नूं ही माड़ा कहंदे हो, इहो ही तुहाडा जोग है। होए अतीत गृहस्थ तज, फिर उनके घर मंगण जाई। जिन्हां नूं माड़ा कहंदे हो उन्हां दा ही दित्ता खांदे। हुण इक विचार है, संतां दे डेरे, जोगियां दे डेरे, विहंगवां दे डेरे किदे सिर ते चलदे? सिमरन प्रभु दा करदे ने, पर इन्हां नूं दान पुन कौन करदा? गृहस्थी करदे। साहब जी कहन लगे तुहाडे नालों गृहस्थी उच्चा, जिहड़ा काम कार करदा, कमाई करदा, वो तिया पुत्रां दी पालना भी करदा, वो तुहाडे वर्गे जोगियां सन्यासियां साधु संतां दी भी सेवा करदा, तुहाडे नालों गृहस्थी उच्चा है। कितना काम करदा? तिया पुत्रां नूं पालदा, वो महापुरुषां दी, साधा संतां दी, गरीब गुरबे दी अपनी कमाई विचों सेवा करदा है। फिर वो संसार दी सेवा करदा है, समाज दी सेवा करदा है। साहब जी कहन लगे साडी निगाह विच गृहस्थी सब तो उत्तम है। गृहस्थी जोगी है, संत है, भगत है, जिहड़ा परिवार नूं पालदा है, जिहड़ा समाज नूं पालदा है, ते जिहड़ा तुहाडे वर्गे वेले जोगियां नूं भी खाण नूं दिंदा। आखो सतनाम श्री। हुण है ते सच, पर सच सुनना औखा बड़ा है। आखो सतनाम श्री। बड़ा गुस्सा चढ़िया, हुण कई डेरे बना के बह जांदे ने। माफ करना, किसी की बुराई नहीं करते, एक विचार है। ते लोकां नूं कहणगे सारा कुछ छड्ड दिओ, सारा कुछ छड्ड दिओ। ते जे संसार दे लोग सारा कुछ छड के बह जाणगे ते फिर डेरे भी किवें चलणगे? नाले कहंदे ने सारा कुछ छड दिओ, ते नाले कही जाणगे जी डेरे वास्ते माया भेजो डेरा बनाना। इट्टां भी चाहीदियां ने, सीमेंट भी चाहिए, रहण वास्ते आराम दे समान भी चाहिए ने। ते जे सारा संसार ही सारा कुछ छड के बह जाए, सारे गृहस्थी गृहस्थ छड के जंगलां विच जाके बह जाणगे, ते संसार दी खेड किवें चलेगी? फिर कहंदे ने नहीं जी, गृहस्थ चाहिदा ही नहीं, ये हुण परमात्मा दी खेड है। परमात्मा ने खेड बनाई है, आदमी औरत बनाया, आदमी औरत तों संसार दी खेड चलदी, तियां पुत्र पैदा हुंदे। ते जे सारे आदमी घर वालियां नूं मावां बनाण लगे ते धन, गुरु नानक साहब कहंदे ने उन्हां जोगियां नूं जिहड़ा संसार तों डर गया, जिहड़ा परिवार तों ही डर गया, जिहड़ा मोह माया तों डर के जंगलां विच जाके बह गया, परमेश्वर की खेड तू जिहड़ा डर गया, वह परमात्मा की प्राप्ति करेगा? आखो सतनाम श्री वाहे।
ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਭਾਗੇ ਫਿਰਤੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਕਿਆ ਤੁਮ ਪਾਓਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਰਦ ਬਣੋ। ਮਰਦ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਉਪਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਨੇ, ਸਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਫ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਫ ਹੀ, ਕਮਰਾ ਜਿਉਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਖ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਬਤ ਮਰਦ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।

खाना पीना पवित्र है, पीण दा मतलब शराब नहीं लेना। पानी, खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संभाहे। एक पासे कहंदे हो रिजक रब दिंदा, रिजक परमेश्वर दिंदा, ते दूसरे पासे जद घर बच्चा जन्म लैंदा है ते ओदे घरों खाना नहीं खांदे कि बच्चे ने जन्म लिया है ते घर सूतक।

लगे भाई जिन्ना गुरमुखा ने जिन्ना सियाणिया ने इन्हां गल्लां नूं जान लिया कि जमना मरना परमेश्वर दे हुक्म विच है, उन्हां ते सूतक नहीं।

एक औरत मर जाए पालिए कहते ने लभना ते फिर इंसान विआह वास्ते दूसरी औरत लभद औरत दे बगैर जीवन नहीं पंड होवे बंधान और दुनिया दा हर रिश्ता।

और वड़ा होके जिसने जन्म दिता है उसे नू फिर कहन लगना है कि तू नीवी है, तू आदमी दे बराबर नहीं, तेरा दर्जा इंसान दे बराबर नहीं। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने ठीक है, कोई जीव माड़ा हो सकता है पर सारी औरत

नीच ओ है जिदे कम नीचा वाले, माड़ा ओ है जिदे कम माड़े ने, चाहे औरत है चाहे मर्द है, ए परमेश्वर दे बनाए ने और परमेश्वर दे बनाए कदी माड़े नहीं होंदे। इस करके पाई सुच्चा ओ है जिदा मन सच्चा है, कला नहान दे नाल तीर्थां ते भजे फिरन दे नाल इंसान सुच्चा नहीं होंदा। आओ जे सूतक मनना है तां विकारां ते मनो, ताकि असी विकार ना करिए। बच्चा जम्मण ते सूतक ना मन।